0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइये,
1: संत का दुखी ना मरे ना जवाइये,
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
1: संत का दुखी उठ चले नरासा,
0: संत के दुख न दृष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कीर्तन मिटे कोए,
1: नारी जाने सच्चा सोए,
0: सब कर दिसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार।
0: कब की उस्तत को

0: लावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किससे डरे
1: जैसा सद ऐसा दिष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सिज्या
0: गुर प्रसाद तात सब भूज

0: गुण गाए
1: अनुग्रह भोग वड़ियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: वो पूजन का प्रसंगीत
0: रसना जपती हर हर नीत
1: बलि सुकरणी शोभा।

विचारे गावन तदनो जति सती संतोखी गावन तदनो वीर करारे गावन तदनो पंडित पढ़नर किसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे।

रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिनू पाई कर कर देखा कीता आपना, ज्यों तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाहु शाहपत साहिब, नानक रह न रजाई, आसा महला पहला, सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए।

सेवक जी क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना।

प्यासा तुम्हें शाड गुई अवरना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन

अरे पछा सिरियस तो जू करे हव रच्छा राख लियो मैं राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विशन प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।

तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गामन आईया शब्दोता गावो हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो मिसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा है करता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुत वास कीते काल कंटक मारिया तुर गर्म पाया तुत जनकाओ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे अनद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल मिसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो आमृत नाव ठाकुर का पयो जिसगा सब सधारो

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तुखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी अते मीडिया राही टीवी चैनल राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना यह मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच लड़ीवार विचार चल रही है वो विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो शब्द गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया हुआ आशा राग दे अंदर

अमृत, यह जिहड़ा अखर बनिया है अमृत, इहदा मूलक अखर मृत है। मृत दा भाव मौत, एड़ा सतगुरु जी ने पहले लगाया है। जिसनू छकण नाल, जिसनू जपण नाल, जिसनू पीउण नाल, जिसनू अपनाउण नाल मौत नहीं हुंदी। केड़ी मौत नहीं हुंदी? आत्मक मौत नहीं हुंदी। हुण अमृत आपां तां इही कहिंदे आ भाई, जिहड़ी खंडे बाटे दी पाकुल है उसे नूं खास करके आपां ये समझ लैने भाई यही अमृत है। पर गुरबाणी नूं पुछीए, गुरबाणी चे तां कई चीजा नूं अमृत आख्या सतगुरु जी ने। जिहड़ी सै, जिहड़ी वस्तु, जिहड़ा पदार्थ तेरे तन ते मन नूं तंदुरुस्त रखे, ओ हरेक सै तेरे वास्ते अमृत है। ओ हरेक से अमृत है। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। वाहिगुरु जी, तेरा जिहड़ा नाम है वो आत्मक जीवन देन वाला है। उसनू जेड़ा भी सिमरदा है, कहन लगे वो आत्मक जीवन जीउंदा है, उसकी आत्मक मौत नहीं हुंदी। पंजवें पातशाह जी नूं पुछिए होर अमृत। जेहे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। उत्थे भोजन नूं अमृत आख्या है। बंदे आ, जिस परमात्मा की कृपा नाल, जिस परमात्मा की मेहर नाल तू शक्ति प्रकार के भोजन छकदा है, जिहड़े तेरे तन नूं तंदुरुस्त रखदे ने, उस परमात्मा नूं अपने मन विच वसा के रख। पशु मिलें चंगियाइयां, खड़ खावें अमृत देह। पशु मिलें चंगियाइयां, पशुआं नूं भी चंगियाइयां मिलदी, उन्हां नूं भी बड़ियाइयां मिलदियां ने। क्यों? कहन लगे प्यारिया, ओ घा फूस छक के भी ओ अमृत वर्गा दुध दिंदियां ने मझां, गावां पशु दुध दिंदे ने। हुण दुध साडे शरीर वास्ते, इस तन नूं तंदुरुस्त रखण वास्ते वधिया है, इस तन नूं तंदुरुस्त रखण वास्ते। होर कई चीजां नूं सतगुरां ने अमृत आख्या कि जिहड़ी सै, जिहड़ी वस्तु, जो पदार्थ साढ़े तन ते मन नूं तंदुरुस्त रखदा है मनुखा, वो तेरे वास्ते अमृत वर्गा है।

तो ऐसा है गुरु रामदास महाराज, गुरु रामदास महाराज का दर जिथे सदा ही बख्शिशा दातां बरस दिया ने, झोलियां भरिया जांदियां ने, जिहड़े खाली झोलियां लैके जांदे ने वो फिर झोलियां भर के आउंदे। गुरु रामदास महाराज ऐसा दाता है किसी नूं कदी भी खाली नहीं मोड़दा, धर्म नहीं वेखदा किसी दा। गुरु रामदास प्यार वेखदा, भावना वेखदा, जिन्नी तू सेवया भाओ कर से तुद पार उतारिया। हे गुरु रामदास महाराज, जिन्होंने तेनू भावना करके सेवना किया है, तेरा नाम जपया है, गुरु रामदास जिन्होंने भावना करके तेरा नाम जपया है, तेरे दर की सेवा की है, भावना करके तेरे अगे अरदास की है, तो सची मुची उन्होंने अरदासा पूरिया की पार उतारा कर दिता उन्होंने। ऐसा दाता है गुरु रामदास। आने वाले दीवाना के अंदर भी इस तरह शहबरा गुरु रामदास महाराज की सिफत। आओ समाप्ति।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

ज्ञानी का सब प्रभात। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निहंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनहि श्लोक, उर तार है जो अंतर नाम। सर्व में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है। नानक ओह परस सगल निस्तार है।

नानक रचना प्राब रति बहु विद अनक प्रकार अष्टपदि कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते

ताल कब हूँ सर्व की उतरवाल, कब हो होए बह बड़ राजा, कब हो पे खारी नीच का साजा, कब हु अब कीरत मह आवे, कब हु पला पला कहावे, ज्यो प्रभ राखै तिब ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहु होए पंडित करे बख्यान, कबहु मोन धारी लावे ध्यान, कबहु तड़ तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग हो जियान, कजोन भरमे भरमिया नाना।

तिसे त्याव सास ग्रह सब कस वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे तिसा प्रणाम दे बिभागी नानक जन से श्लोक तजहो सियानप सुरजनह सिमरहो हर हर राय एक आस हर मन रख हो नानक दू परम पहो जाय अष्टपदी।

मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जान हो ते सुखी एक हो एक हो एक एक पछाने तुद की ओ सो जी जान है नाम संग जिसका मन माने नानक तिन है निरंजन जाने गुर प्रसाद अपने आप सुजे तस की जानो त्रिसना बूझ आए साध संग

नाथ मानस जतन करत बहु पात तिसके करत बिरथे जात मारे राखे वरन कोई सर्व जिया कारा खस होय काहे सोज करहे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलाखि।

सांग से खुदराय नानक हर गुण गाहु अष्टपदी सात गुर सेख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सेख की गुर दुर्मत मल हिराय गुर बचनी हर नाम उच्चराय सतगुर सेख के बंधन काट है गुर का सेव कार ते हट है गुर का सिख विकार ते हट है सत गुर सिख कौ नाम तन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हालत पलत सुवार नानक सतगुर सिख कौ जी नाल सुमार गुर कै गृह सेवक जो रह।

मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल सिमिग्री एक कट माह अनकर नाना दृष्टा है नौने दे अमृत प्रभु का नाम देहि महस का विश्राम।

निरंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे ति सिर नाहे जे फुरमाए तिब ते पाहे जिता कीता तिता लाओ बिरना मैं नाही को थाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार।

प्रसाद चक्र चिहन अर बर्ण जातर पात नह नह रूबरंग रेह पे कौ कहना सकत के है।

अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, अरफीक है, अतंत है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, दर शरीक है, दृढ़ है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिरेक है, भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वौणे अनंगी अनाथेन्द्र संगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो दान दाने नमो निर्थ निर्थे नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंक विदारे कलंकी स्वरूपे नमो राजे सुंगपरम रूपे नमो जोग जोगे सुंगपरम सिद्धे नमो राजे सुंगपरम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगे सुंगपरम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संसनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृहदकर्ता अदो ऊर्ध अर्धंग अगंग ओघर्ता परंग परंग परमेश्वरं प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदीय भेदिया नाम अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी शांत जले हैं थले हैं पीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्तवंग नृनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्वोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदेशंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अरंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजय समस्तंग प्रसिज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट शांत द्वा प्रसाद अमृत गर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अल करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वान्तरमान देव अभेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठामना जात जागरूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और ना पेहजा के रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्वान सर्वतरमान सदैव मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे भेबना जाने जे भेद और कतेव रूप रंग ना जात पास सो जाने के जेब आत्मात्ना जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जग मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जे जाप आदेव नाद मूर्त थाप्यो सबे जे था परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व सब रचय स्वयं गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरखादेश धर्मधाम सु परम रायता भूत अलख अभे संग रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुग्धाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अभूत गर्भ गंजन सर्वभंजन आदरूपूत अंगहीन अभंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्वगायक सर्व प्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्वतन सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेथ भाखत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही बहु चेत मदभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा

गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंगासन उपमा पार गतमितुदार जल थल अमंड दिशुस पंड जल थल मन दिशुस ब्यांत अनुभव राज तिरतरतुर आसा जान बाह आजान बाहो एक सदा ओंकार आद कथनिया नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल घर घर प्रणाम चित चर नाम अंश च गात अजना बात अन झंझ गात अंदरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आठ सरमत ठीठ कर्म अन बरन आनंद दाता महंथर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडल है मह मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जाके कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्पास है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है प्रतेपर है करुणाकर है आ जपा जपे आ थपा थपे आ कृता कृता अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा करते हैं आ कृता करते हैं तरणी तृत है आमतेश्वर है परमेश्वर है आ कृता कृत है आमृता मृत है अजवा करते हैं अमृता अमृत है नरनायक है खरकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है अर्भतापन है जब जापन है अकलं कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है अर्थ हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जासके जास है भुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग ताम संग सांद रूपे नमो परम तत्ंग ततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंग विभूते कलंगा रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांग बंगे भंगी स्वरूपे अलंगी अनामे त्रभंगी त्रिकाले अलंगी अकामे एक अश्री शांत अजाय अलाय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलाख अपाख अकाल दयाल अलेख अभेघ अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृगामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी करीमुल करिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियंग करियंग करीमुल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर जगर भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग वर्णासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर जगर भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व

परम सम्मान योग जुग जुग अटल जवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपने घर बैठे कारोबार ते बैठे मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठे हो सारे ही बहुत वड्डे पागां वाले हो आओ अज जो सतगुरां ने अमृत वेले पावन हुक्मनामा बख्शिया उसकी विचार आपां कर सकीए विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो अमृत वेले सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने पावन फुरमान बख्शिया ओ पावन शब्द पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया होया जैतसरी राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 701 702 उत्ते सुशोभित है। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने पहले पदे नूं ही रहाउ दा बंद बनाया ते गुरदेव पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने कोई जन हरस्यों देवै जोर। हे भाई कोई मनुख मैनू परमात्मा दे चरणा नाल जोड़ देवे जां इवें कह लईए इवें अर्थ कर लईए कि जिस मनुख दे अंदर परमात्मा दे चरणा नाल जुड़न दी अंदर विहवलता है अंदर एक तड़प है अंदर एक चीज है ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। चरण गाहों मैं उदे चरण फड़ लवांगा। इतिहासक घटना आपां लईए चरण तां भाई लैणा जी ने भी गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे फड़े ने गुरगद्दी दे वारस बन गए। चरण तां बाबा अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने भी धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण फड़े सन गुरता गद्दी हासिल कर ली। चरण तां भाई जेठा जी ने भी गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे फड़े सन गुरता गद्दी हासिल कर ली।

हसे बोल बिगाड़ बिगड़े बोल तू नदरी अंदर तुल तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो कट काट प्रणत नानक ज्ञानी कैसा होए आप छाने बुझे सोए गुरप्रसाद कर विचार सुग्ञानी दरगे प्रवान चिर राग माला पहला घर चौथा तुंदरिया उदाना बेना मैं मछली कैसे अंतल हाँ जह जह देखा तह तह तू है तुझ ते निकसी फूट मारा न जाना म्यो न जाना जाली जा दुख लागे तो तुझे संभाली रहाओ तू भरपूर जाने मैं दूर जो कश करी सो तेरा दूर तू देखे हाँ मुकर पाओ तेरे काम न तेरे नाए जित दे खाओ ब्यादर नाही कैधर जाओ नानक एक कहे अरदास जीवन सब तेरे पास आपे नेड़े दूर आपे आपे मान्य मियानू आपे बेक सुने आपे ही कुतल करे जहानू जो तस्पावे नानका हुकम सोई परवानू

जेक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारी यार जा होर दसुनी होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोए। चंगा ना रखाई कै जासकिर जग ले, जे तस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट करे दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत आ गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तस गुण कोय करे, सुनया सुध पीर सुरनाथ, सुनया तर तवल आकाश, सुनया दिवलो पाताल, सुनया पोय न सका काल, नानक पतन सदा विगास, सुनया देव दुख पाव का नाश, सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनया मुख सलाहण मंद, सुनया जोग जुगत तन भेद, सुनया शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाव का नाश, सुनया सत संतो ज्ञान, सुनया अठ सरिकाय सुनान।

ने कावे करण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मंडाने मन कोए, मन न सुरत होए मन बोध है, मन न सकल पवन की श्रद्धा है, मन न मुचटा न खाए, मन न जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मंडाने मन कोए, मन न मार्ग ठाक न पाए, मन न पशुओं पर कट जाए, मन न मग न चले पंथ, मन न धर्म से संबंध है,

निरंजन होय। देखो मंडाणे मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावन दरगह मान पंचे सोहन राजान पंचा का गुरु एक त्यान। देखो कह है कर विचार करते कह करना नहि सुमार तौल धर्म दया का पूर्ण संतोष था प्रख्या जन सूत।

तिथ सोन पंच परवान नदरी करम पवे निषाण कछब काय उथ पाए नानक आ जाप जाए धर्म खंड काय हो।

श्री तरिया सर सर जग समाए ठाकुर काहे मन पाउ करिया उड़े उड़िया बस को सात पाछे बचरे चरिया तिन कमण खलावे कमण चुगावे मन मह सिमरन करिया।

जात अजात सच मिले सच उपजे सच में सात समाय सुरत वे पत उगवे गुरबचने भाव खाए नानक सच्चा पात साहु आपले मिलाए श्री आगमन लपल भली सरी जे उबरी होमे मुई कराओ दूत लगे फिर चाकरी सगुर का वैसा कलम त्यागी बात है सच्चा वे प्रवाह मन रे सच मिले पाओ जाए पैवन निरपो क्यों थी है गुरम सब समाय राव के तया खनि आखी अखन तोट ना होए मंगन वाले के तड़े दाता को सोए जिसके दी प्रण है मन वस्या सुख होए जग सुपना बाजी बने खिन में खेल खिलाए संजोगी मिले एक से वे जोगी उठ जाए जो तुपाना सोती अवना करना जाए गुरमुख वस्तु साई सच वकर सच रास जिन्ने सच बणन दिया गुरु पूरे सवास नानक वस्तु छण से सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला तात मिले पुन तार को सिफ्टी शिव समाए ला गुलाल गैबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए पाई रे संत जना की रे न संत सभा गुरु पाइये मुक्त बदार तेन राउ चौथान सुहावना उपर मैल मुरारे सच करनी दे पाइये दर कर मैल प्यार गुरमुख मन समझाई आत्म राम विचार त्रिवत कर्म कमाई संदेशा होए क्यों गौरबिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिलिया सुख होए निजकर मैल पछाणी।

मुख नाम न बोधे अमर जन्मे आवत आये राहो तान सोचा सो आखिय जसमें साचा नाहो पै सजरति देवरी देवा सच सुहाओ सचि नद ने हालिय बुण न पावे ताओ साचे ते पवना पया पवने ते जल हो जल त्रिपुण साचे कड़ कड़ ज्योत संभव निर्मल ना थे सब रथे पत हो ए मन साच संतोखिया नदर करे ते सुमाहे पंच भूत सच पैर ज्योत सची मरमाए नानक अगुण विसरे गुर राखे पतताए श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सचकी तरिया गुर विचार इक आवे क जावे पूर परे अंकार मन हट मती बुढ़ी गुरमुख सच सो तार गुर बिन क्यों तरिया सुख होए जो पावे तो राख तू मैं अवना दूजा कोई राव अगे देखो डो जल है पाछे हरे अंगूर जिस देव जते ते बिन से कड़कड़ सच पर बूर आपे मिल मिला भी साचे मैल हदूर सा सा तो समला क देना विसारे हो ज्यो ज्यो साहे मन वसे गुरमुख अमृत पे हो मन तन तेरा तू तनि गर्भ निवार समय ओ जने दई तो पाया त्रिपुण कारिया कार गुरमुख चरण जानिए मनमुख मुग्ध गुवार कड़ कड़ जोट निरंतरी बुझे गुरमत सार गुरमुख जिनी जाने तन किचे साबास सचे सत्य रल मिले सत्य गुण प्रगास नानक नाम संतोखिया दियो पिंड प्रभास श्री राग महला पहला सुन मन मित्र प्यारे मेरे वेला है ए जब लग जो बिन सास है तब लगे हो तन दे बिन गुण कामना बैठा तेरी तन खे मेरे मन लैला कर जाए गुरमुख नाम चलाए हो मैं निवरी पाए राहो सुन सुन गंडन गंडिया लिख पढ़ बुझे पार त्रिस्नायन सगली हो मैं रुग बेखार हो वे प्रवाह तोलवा गुर मत कीमत सार लख सयान बजे करे लख सो प्रीत में लाप बिन संग साधना त्रापिया बिन नामे दुख संताप अर्दब जीरे छुट्टिया गुरमुख चीने आप तन मन गुर पै विचया मन दिया सर नाल त्रै पवन खोय टंडो लिया गुरमुख खोय ने हाल सतगुरु मेल मिलाए।

त्यो निर्जास जियरे राम जब तमन मानु अंतर लागे जाल बुझे पाया गुरु ज्ञान राव अंतर की गत जानिए गुरु मिलिया संक्योतार मोया जित कर जाइए।

खाड़ दरगाह पहनाये मुखर नाम निवास जद खत रावरे सब शक्ति का मेल त्रिगुण बंदी देरी जो आया जग स्यों खेल विजोगी दुख विच

भावना विसरे ते जन विरले संसार राव ज्योति ज्योत मिलाइय श्रुति श्रुत संजोग हिंसाओं में घात गए नाही सह सारोग गुरु जिस मन से।

आप गया सुख पाया मैं सललाय सलल समाय जिन हर नाम न चेत्यो से अवगुणिया बजाय जैसो सरगुरु पर खरना पेट्यो सुपो जलपते पचाए माण जोन्द्र मोल कौटि बदले जाए जिन्ना सगुर रास्त मिले सुपूरे पुरुष दान गौर मेरे पावदर लंगी है दरगह पट प्रवाह नानक तेम को जले तुन बुद्ध सब दिन छाण श्री राग महला पहला वर्ण करो वर्ण धारे हो वखले संभाल सिव तो साइए जासी ने बह नाल अगे सासो जान है ल सिव संभाल पाई रे राम को जित लाए जस हर जस वखल ल चलो सो देखे पति आए रहो जिन्ना रास ना सच है क्यों तिना सुख हो ए खोटे बन जमन जिये मंत्र खोटा हो पाई फाते मृगजन ढूंकण हो नित रोए खोटे पते ना पवे तिना गुर दर्शन हो ए खोटे जात ना पाते खो न सिज को ए खोटे गुड़ मावना गया पाते खोए नानक मन समझाइए गुर के सब सलाह राम नाम रंग रत्या पार न परम तिना हर जपला अगला निरपव हर मन मा श्री राग मन लप

सुंगे कर काओ गुरमति कर चाना शब्द मिले हर नाओ त्रैगुण बिखिया अंधा माया मोह गुबार लोभी मान लोभी आन को सेव दे पढ़ वैदा करे पुकार बिख्या अंध सच मोए न उर्वार न पार माया मोह विसारया जत पिता प्रतपाल बाजो गुरु अचेत है बाजो गुरु अचेत है सब बद्दी जमकाल नानक गुरम उभरे सच्चा नाम समाल श्री राग महला तीजा त्रैगुण माया मोह गुरम चौदह पद पाए कर कृपा मिलाहिन हर नाम वस्या मन आए पोते जन के पुण है जन तन सत्संगत मिलाए पाई रे गुरम सच रहाओ सचो सच कमावना सच शब्द मिलाओ रहाओ जिन्नी नाम पछाणिया तन विटो बल जाओ आप छोड़ चरनी लगा चलना तन के पाए लाहर हर नाम मिले सजे नाम समाए बिन को महल न पागे नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोह लो जिंदु पागे सच सोए अस सिंगारे सुख बसे जो तिस भावे सो होए जिहा सतगुर कर जानिया तेह जिहा सुख होए यह सहसा मूले न पाहो लाए जन कोय नानक एक जोत दोहे मूर्ति शब्द मिलावा होए श्री राग महला तीजा अमर तो छोड़ बिख्या लो बाने सेवा कहे बेडानी अपना धर्म गुवावे बुझे नाही अंधन दुख बिहानी मन मुख अंधन चेती डुब मोए बिन पानी मन रे सदा भजो हसर नाई गुर का शब्द अंतर बसे ता हर विसर ना जाई रहाओ ए श्री माया का पुतला विच हमें दुष्टि पाई अहम जाना जमन बरना मन मुख पत गुवाई सतगुरु सेवे सदा सुखो पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुरु सेवा अत सुखाली जो चे सफल पाए सात जात सत सप पवित्र श्री रा हर हर मन बसाए सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुरु श्री सरनाती हम तनके बल जाओ दस सच्चे सच्ची वडियाई सजे सच समाओ नानक नदरी पाए गुरुख मिल मिलाओ श्री राग महला तीजा मन मुख कर्म कुमावने जो दुहागन तेन सिंगार सेजे कंतने आवि नित नित होए खोवार एका महल न पाहिनी ना दीजे करवार पाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहो गुरमुख सदा सुहागनी पे रख्या उरुधार मिठा बोले नहव चले सेजे रवे पतार सोभा बंती सुहागनी जन गो का हित अपार पूरे भाग सतगुर मिले जा भागे ता अंदरो होए अंदरो अंदरो दुख परम कटिए सुख प्राप्त होए गुर के पाने जो चले दुख न पावे कोए गुर के पाने विच अमृत है सजे पावे कोए जिन्ना प्राप्त तन पिया हमें विचो खोए नानक गुरमुख नाम त्यागे सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जा पहचाने अपना तन मन अगत रे सुहागनी कर्म कुमार

वो सत गुरु अग्नानवे उन अंत क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है, हर आपे हर रस होए। आप दया कर देव सी गुरमुख अमृत चोए। साब तन मन हरिया होया, नानक हर वस्या मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिस चढ़े फिर आस आथवे रहन सवाए। जाए आप कटे नहर ना बुझे, नित मूसा लाज टुकाए। गुण मिठा माया पसरिया, मन मुख लग मखी पचे पोचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। रहाओ गुरमत आर लिव उभरे, अलबत रहे सरनाए। उन्हें चलन सदा निहालिया, हार खच लिया पत पाए। गुरमुख दरगे मनिए, हर आप लय गलाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा, गुरमुखानो पंथ प्रगटा। दर ठाक ना कोई पाए, हर नाम सलाहे नाम मान। नाम रहे लिवलाए, आंदन आंदन तुन्हें दर बजदे दर। सच्चे सबा पाए।

रंग हार साब जग मह चन होय श्री राग महला पंजमा मन बिलास बहु रंग ना दिट पूल खुशियां छतर तहर बसाइया विच ससे परिया भाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विधाते दुख ससा मिट गया रहाओ जेते थान थन त्रा तेते पया आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुकम चलायन संग होए वरते फरिया साब को बसगत कर लायन बिनावे खाक रलिया कोट तेती सब सेवका सिद साधक दरखरिया गुरबारी वड साहिबी साब नानक सुबंथिया श्री राग महला पंजमा पलके उठ पुल गए बिन बूझे मुग्ध अजान सो प्रभ चेतन आयो छुटे घी बेबान सतगुर सेती चत लाए सत

गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो बिख्या पे न सकी मिल साधु गुण गाहो जैते उपजीतै मिली सची प्रीत सुमाहु कर गैली नी पार ब्रह्म बौड़ न विछड़िया बार जाओ लख बेरिया सजने अगमे अगाह सरम पई ना रहने नानक दर पई आ भोग सुबंधा सर्व सुख जिस बख्शे वे प्रवाह भाग मजन संग साधुआ तूड़ी करे स्नान हर का नाम ते आए सुन सबना नू कर दान जन्म करम वाले उतरे मन ते जाए गुमान काम क्रोध न मोहिए बनसे लो सुहान सच्चे मार्ग चलदिया उस्तद करे जहान अड़ सड़ तीर्थ सगल पोना जी दया परवान जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान माघ सुचे से कांडिये जिन पूरा गुर मेहरवान फल गुण नंद उपार जनार सज्जन प्रगटे आए संसवाई प्राराम के कर कृपा दिया मलाए से सुहावी सर्व सुखुण दुखा नाही जाय चुपनी वड भागनी वर पाया हर राय मिल सैया मंगल गावे गीत गोविंद उलाए हर जिहा अवरना दिसई कोई दूजा लवे ना लाए हलत पलत सुवारे ओन नेचल दित्ती अन जाए संसार सागर ते रखिया न बौड़ न जन्मे ताए जे वाए के अनेक गुण तरे नानक जरनी पाए फल गुण नित सलाईए जिसनु तिल ना थमाए जेना जिन नाम ते आए आ तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर पव जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत पले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे माज महला पंजवा दिन रहे नेको अंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुरे अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरणी पवा मुखम बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़े आर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैन हर पिर बिन चैन

मन मंदर तन साजी बार इसी मदे बसते अपार इसी पीतर सुनियत साहु कण व्यापारी जां कहुआ वसाहु नाम रतन को ब्योहारी अमृत पू

कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, नृपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नाव निध तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया।

जुआ बंधन तोड़ बुलावे राम मन में लागे साज ध्यान मिटे कलेसा सुखी होए रही है ऐसा दाता सतगुर कही है।

हर हर कसा सदा जप जपनाय। मंत्र तंत्र औखद पुनः चार, हर हर नाम जी प्राणी उधार, साचा धन पायो हर दंग दु।

कवन सो पूजा तेरी करो, कवन सो बेदा जित भव जल तरो, कवन तप जित तपिया होए, कवन सो नाम होमे मल खोए। गुण पूजा गुण गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल काल, जिस कर कृपा सतगुर मिले।

जीवन कौन काम रहाओ, खाद पी खेलत हस्त विस्तार, कवनार्थ मृतक संसार। जो ना सुने जस परमानंदा, पशु पंखी दरंग जोन ते मंदा, को नानक गुरमंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद मह समाया। कोड़ी महला पंजवा, जा की माई का को बाप, नाम तरीक झूठे सब साख, काहे का मूर्ख पगलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया रहा।

0: नाहीं। को नानक गुर खुले कपाट, मुक्त पै बिंस भरम थाट। गोड़ी महला पंजवां। वड्डे वड्डे जो दिसै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, जो वड्डा जिन राम लिव लाई। रहो भूमि भूम उपर नित लूजै, छोड़ चले तृष्णा ने बूजै। को नानके तत् विचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां। पूरा मार्ग पूरा स्नान, सब कुछ पूरा हिरदय नाम। पूरी रही जा पूरे राखी, पार ब्रह्म की सरन जन तक की। रहो पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा ताप पूर्ण राजोग। हर के मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लौकिक। करण हार सद वसे हजूरा, को नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवां। संत की तुहूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म ते छोट। संत का दर्श पूर्ण स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम। राव संत के संग मिटिया अहंकार, दृष्टा वै सब एक ओंकार। संत सो प्रसन्न आए वसे पांचा, अमृत नाम हृदय मैं संचा। कहो नानक जाके पूरे कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। कौड़ी महला पंजवां। हार गुण जापत कमल परगासै, हर सिमरन दास सब नासै। सा मत पूरा जेत हर गुण गावै, वड्डे भाग साधु संग पावै। राव सा संग पाए पाइए निध नामा, सा संग पूर्ण सब कामा। हर की भागत जन परवान, गुरपुरा गोरपुर ते नाम बिखान। को नानक सो जन परवान, जाके हृदय बसे भगवान।
1: गौड़ी महला पंजवां। एक सो जा का मन आता, विसरीत से पराई दाता। बिन गोबिंद ना दिसै कोई, करन करावन करता सोई रहाओ। मन कमावे मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह न डोले। जाके हर तन सो सच साहो, गुरपुरै कर दीनो बेसाहो। जीवन पुरख मिलिया हर राया, कहो नानक परम पद पाया। गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत के प्राण आधार, नामो धन नामो व्यवहार। नाम वडाई जन शोभा पाए, कर कृपा जिसे आप विदेवाए। रहाओ नाम भगत के सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को धार है, सास सास जन नाम समार है। कहो नानक जिस पूरा भाग।

काज सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सबस कर दीने अमृत नाम महारस पीने। निरपव होए भजहो भगवान साध संगत मिलकीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ऊट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा हर संगराते पाए न जलै। हर संगराते माया नहीं छलै। हर संग राते नहीं डूबै जलै। हर संगराते सो फल फला सब पै मिटहे तुम्हारे नाए। पीटत संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संग राते मिटै सब चिंता। हर स्यो जो हर स्यो सो रचै जिस साध का मंताओ। हर संग राते जम की नहीं त्रास। हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख ना लागै। हर संग राता अंधन जागै। हर संग राता सहज कर वसै। हर संग राते प्रम पौ नसै। हर संग राते मत उत्तम हो।

खेमा पया कुशल कर आए पीड़त साध संग गई बुलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेकत ही दरस तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एह काया संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाय सुख पाया लगदा सह पाए आप गया ता आपे पए कृपा निदान की शरणी पए। जो चाहत सोई जब पाया तब टूंडन कहाँ को जाया। आस्त्र पए वसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख वासन गौड़ी महला पंजवा। कोट मजन कीनो इश्नान लाख अरब खरब दीनो दान। जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित गुण गाय गोपाल पाप मिटहे साधु शरण दयाल रहाओ। बहुत उर्द तप साधन साधे हनिक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने। नाम जपत प्रभ स्यों मन माने अगाध बोध हर अगम अपारे। नाम जपत नाम हृदय विचारे नानक को प्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया। गुर गोविंद पार ब्रह्म पूरा तसे अराध मेरा मन तीरा रहाओ। आंदन जप्यो गुरु गुर नाम ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए जन्म जन्म के किल विख गए। कहो नानक कहा है कहो नानक कहा पै पाई अपने सेव किया पै जरखाई। गौड़ी महला पंजवा। अपने सेव को आप सुहाई नित प्रत पार है बाप जैसे माई। प्रभ की शरण उबरे सब कोय करन करावन पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन वसिया करने हारा पै बिनसे आतम सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल विख लाते। कहन न जाए प्रभ की वडे आई नानक दास सदा सरनाई। रा गौड़ी चेती महला पंजवा। दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम को बल पूर्ण पाई ताते व्यर्थ न व्यापै पकाई रहाओ। जो जो चित वैद

उज्ज्वल वीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गहले हो अंगुरिया रहाओ सर्वना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीनानाथ।